आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत।

संगीत सरिता 6:45 पर आप सुनेंगे, जिसके अंतर्गत श्रृंखला चल रही है ताल प्रवाह, जिसका भाग 10 आज प्रसारित होगा। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम को आप पुनः 6:45 पर शाम को सुन सकते हैं। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार की। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी, जिसे आप पुनः दिन में 2:00 सुन सकते हैं। आलेख एवं स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम को आप पुनः रात्रि 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा। संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3:00, ओणम ईद ए मिलाद पर चर्चा आप सुनेंगे, नारी की पहचान उसके अपने नाम से, इस पर भी चर्चा होगी। साड़ियों का संसार में आप चर्चा सुनेंगे केरल की फेमस साड़ी बाला रामपुरम साड़ी के बारे में। शब्द हमारा विचार आपके में ईर्ष्या पर बातचीत होगी, व्यंजन के अंतर्गत सूजी के व्यंजन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, संपादन सहायक काजल भदरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान, शाम 4:00। 5:00 छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर आनंद लीजिएगा संध्या रंजन कार्यक्रम का। 4 साथियों का कार्यक्रम जयमाला 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात्रि 8:00 हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी खरीदारी कोट की, लेखक के एल यादव, निर्देशक विजय बैनर्जी। 8:45 पर और रात्रि 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10:00 कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आप सुनेंगे सुंदरकांड का भाग 292।

मंदोदरी के अनुनय विनय का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने पटरानी की नीति युक्त प्रार्थना को मात्र नारी मन का भय बताया। राज्यसभा में जब उसने मंत्रियों से मंत्रणा चाही तो सभी ने श्रीराम की सेना के लंका में उतर आने को एक ऐसी नगण्य घटना बताया जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर सुहाती करने वालों का कहना था, जिसने देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए वानर सेना किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य तथा गुरु, जब ये तीन भयवश अथवा लाभ की आशा में स्वामी की हां में हां मिलाएं तो सत्ता, शरीर और धर्म का नाश अवश्यंभावी होता है। अभिमानी रावण के साथ भी यही हुआ। इस अवसर पर सभा में उपस्थित होकर विभीषण ने हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार कहा कि क्रोध, मद और लोभ ये सभी विनाश के रास्ते हैं।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम इस ताल प्रवाह में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं तबला नवाज श्री कालीनाथ मिश्रा जी। अभी तक हमने कई प्रचलित और अप्रचलित ताल सुने हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। हमें बहुत अच्छा लगा है, आनंद भी हुआ है, और इसके साथ साथ मीठी मीठी धुन भी हमें सुनने को मिली है। नाच पर, गाने पर जो जो ताल प्रयोग होते हैं उसका खूबसूरत अंदाज हमने सुनी है। मैं मिश्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल सुनाएंगे?
2: इस कड़ी में दास बाबू, मैं सोच रहा हूँ कि फोक का एक अंदाज है जो ठुमरी में ये ज़्यादा प्रचलित है, ये ताल जिसे कहते हैं हम चाचर भी कह सकते हैं इसको।
1: जी,
2: चाचर। धा धा तक धिन तक तक, तो दीपचंदी का एक अंदाज है। तो देखिए, उस दीपचंदी में लग्गी या एक अंदाज छोटा सा, जरूरी कि उसमें हम तबले का बोल पढ़ें, एक चलने का तरीका कैसे, कभी कभी प्रेम बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, आप मुझे बताइएगा चाचर और दीपचंदी में कोई फर्क है?
2: एक चलन का, खाली हल्का सा चलन का। धा धीन धा धा तीन तक, धा धीन धा धा तीन तक, हल्का सा अंदाज का एक है। तो प्रस्तुत करते हैं हम दीपचंदी। अंग है, देखिए वो आया वहीं से है।
1: अच्छा, क्या ऐसी बात है क्या कि चाचर फोक म्यूजिक में प्रयोग होता है
2: ज्यादातर,
1: और दीपचंदी ठुमरी में प्रयोग होता है? ओके,
2: तो आया ये रूपक का अंदाज है। रूपक ती तीना धीना धी, अगर हम प्योर ती तीना धीना धीना बजाएंगे तो ताल कराएगा रूपक ताल, लेकिन ये दीपचंदी खास है। दीपचंदी विलंबित भी बहुत होता है, जिसमें बहुत गुनीजन ठुमरी गाए हैं, रुका हुआ दीपचंदी। लेकिन आज मैं फोक टाइप का सुनाता हूँ दीपचंदी आपको।
1: बड़ी अच्छी बात है
2: फारूक भाई।

इस जो इसका जो छंद है इसमें दास बाबू, इसमें बहुत से राजस्थानी फोक भी हैं, बहुत से गाने फिल्मों के हैं, बहुत सी ठुमरियाँ गाई जाती हैं हमारे बनारस में, चैती, कजरी, टप्पा, लेकिन इसका एक अंदाज आपको दिखा रहा हूँ कि दीपचंदी का क्या अंदाज है। पर ये आया रूपक के हिसाब से आया, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना, पर ये ठेका हो जाएगा।

0: अंदाज लग्गी का अंदाज है वो, कि रूपक से या दीपचंदी से या दादरा से कहरवा में कैसे जाते हैं, उसका अंदाज बदल जाता है। और बड़ा एक एक ऐसी जगह, एक ऐसा जगह है श्रोताओं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कैसे हम जाते हैं ताकि लय को तकलीफ ना हो।
1: वाह,
0: लय को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए

0: तो ये है दीपचंदी का एक अंदाज। और
1: क्या बात है,
0: एक बात मैं और कहना चाहूंगा श्रोताओं को, सिर्फ घराने के ऊपर मत जाओ, मैं इस घराने से हूं, मैं उस घराने से हूं, मैं फर्रुखाबाद का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं बनारस का हूं। नहीं, आप जिस गुरु से सीख रहे हैं उस संगीत को आगे बढ़ाइए। अगर संगीत सरिता यही सोचे कि मुझे सिर्फ घराने को बुलाना है तो मुश्किल हो जाएगा हमको सुनने के लिए। और आज पूरे भारत में हम इसको रेडियो को सुनते हैं कि आज किसका गायन होने वाला है, आज किसका बांसुरी बजेगा, आज किसका सारंगी बजेगी, आज किसका तबला होगा। तो आप रियाज करिए, गुरु से शिक्षा पाइए और उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे विस्तार करेंगे। हमने कभी देखा नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन कंठे बाबा को, कंठे महाराज जी को,
2: कंठे महाराज,
0: उनको मैंने सुना कि वो गायक के साथ जब बजाते थे या सारंगी के साथ बजाते थे तो उनका तबला भी गाता था।
2: क्या बात,
0: ऐसा सुंदर ठेका देते थे, गड़ा हुआ ठेका, कि लगता था कि शायद ये गाना गा रहे हैं कि तबला बजा रहे हैं। उसी तरह से पूरन महाराज, किशन महाराज जी के पुत्र, अभी यंग कलाकारों में मैं दो चार नाम बताऊंगा, जैसे आज संजू सहाय, क्या बढ़िया तबला वादक हैं, बहुत लाजवाब, गट्टा बायां चांटी, मिजाज भी वैसे अच्छा है। शुभ जो महाराज जी के नाती हैं, राम कुमार मिश्रा, तो एक अंदाज होने चाहिए गाने बजाने का कि हम उसको क्या करते हैं। ये नहीं कि हाँ आप चार प्रोग्राम कर लिए तो आपको ये नाज हो गया कि मैं बहुत बड़े कलाकार से, नहीं नहीं नहीं, आप संगीत की साधना करिए, सरस्वती जी की पूजा करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम आगे करिए, अपने गुरु का नाम आगे करिए।
2: क्या बात, बहुत खूबसूरत बातें आपने की है। और चाचर, दीपचंदी, इन तालों को बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रदर्शन की है।
0: एक बात और बताना चाहूंगा जी, मुझे अचानक देखिए एक गाना याद आया, इसी दीपचंदी का है और म्यूजिक है उसमें शंकर जयकिशन जी का
2: जी,
0: फिल्म है आरजू, आपको याद आ रहा है गाना कितना अच्छा है, इसमें प्योर क्लासिकल म्यूजिक, अजी रूठ कर अब।
3: এতক্ষণ শুনছিলেন আকাশবাণী মুম্বাই কেন্দ্রের বিভিন্ন

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ

0: दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवार

0: मामलों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित

0: किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad.

0: एकक मरण। और आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल।

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमरीका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at the 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
4: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्छल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चरें देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे रहता था, कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसे देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा, तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो एक 5 साल का सफर उनके साथ

रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नेहरानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्म में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिशन रामगोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चलेगी पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थी, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं

0: बियर बाहर है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था, मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने अगर टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट के राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च की, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जान मुझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वो डिसीजन लिया और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी ऑन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म ऑन का गाना।

0: तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, मैंने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी।
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की, प्रोड्यूसर ने मेहनत की, मेरे राइटरों ने मेहनत की, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है।

उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। एसपी उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 2008 में, फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहां जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।

0: हारकर की कर रहे हैं, तो ये जिक्र भी जरूरी है। यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई, तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
3: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
3: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
3: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
3: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
3: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई

0: टोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना, और बहुत सहज थे वो।
1: जी
0: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की,
0: जी
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
0: हाँ, ऐसे ही हमारा वो
1: खेल
0: आम की
1: वाले, हाँ
0: गुठलियाँ
1: आम की
0: वगैरह, हम भी
1: गुठलियाँ वाले।
0: खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना, और उस
1: मिट्टी में,
0: वो वाला खेल तो हम खूब
1: अच्छा
0: खेले। खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय तो
0: अरे
1: लड़कियों
0: मार
1: की मनाही
0: पड़ती थी,
1: बहुत होती
0: डांट
1: थी।
0: किधर पड़ती
1: तो बताइए ना, वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
0: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है, तो वो साइकिल मैं सीख रही थी, तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से, और सुबह तक मेरा पैर इतना सूज
1: सूजा
0: गया था। तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इस तरह का।
1: नैतिकता बहुत
0: हाँ,
1: सिखाई
0: बहुत
1: जाती
0: सिखाई
1: थी
0: जाती
1: बचपन
0: थी।
1: में।
2: माँ बाप दोनों टीचर थे। अच्छा,
0: अच्छा, मेरे माँ
1: कौन
0: बाप
1: सी गांव की
0: दोनों,
1: बात है ये?
0: ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहां गांव
1: जी,
0: की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
0: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया, वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू अकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है, गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए।

0: की कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
1: बिल्कुल
0: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है।
1: जी क्या
0: अगर वो है? अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं और ज्यादातर लोग। तो ये विविधताएं जो हैं करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है आपको। स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है।
1: जी जी
0: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
1: जी,
0: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
1: जी। वेलकम टू दी जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
1: राकेश देशमुख है आपकी कैसी?
0: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है। मैं देखना चाहता हूं क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
1: हाँ।
0: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
1: अच्छा।
0: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल।
1: जी अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित है और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहिब, टशन में ACP कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसी मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
0: सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा, धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन हाँ अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली, तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्धि फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो सुमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं।

0: है कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुना है।
0: याद है तुमको तुमने कहा था तुझे नहीं लूटेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी, क्या

0: कसम वो इरादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका?
2: इन्होंने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा है।
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
2: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी। बहुत
3: अगर ये बोल रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई।

0: अरे लेकिन गाना कमाल है ये।
1: हाँ। नहीं अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
2: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये नापसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: पसंद तो शादी के पहले होता है, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति।
2: नहीं नहीं वो लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
0: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं
1: जी।
0: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
1: अच्छा
0: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
0: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा
0: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को।
2: गई बात गई
0: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
2: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर रखने?
2: नहीं नहीं ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
1: अच्छा
2: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
1: अच्छा क्या बात है, बहुत
2: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
0: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़े हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
1: सच बोल रहे हैं प्रतिभा जी? चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
2: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
0: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
2: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद का रंग?
0: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगते थे ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
1: ओहो क्या बात,
0: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप के, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
1: क्या बात,
0: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली थी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है, कहते नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ
1: श्रोता सुन रहे
0: हैं। तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में?
2: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: आप गांठ रख लेती हैं मन में?
2: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी?
0: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए यहाँ
0: सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए तो क्या?

0: याद कर पाएंगे, बताएंगे पांच या छह?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं,
0: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना।
1: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल
0: की। जी जी,
1: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
0: जी,
1: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी।
2: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
1: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया, हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी, मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है, अभी पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
0: जी,
1: 5 साल लगे बनाने में।
0: क्या बात है,
1: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
0: जी। आपने डायरेक्ट भी किया।

0: अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको,
1: जी,
0: कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट टू बनाना है अभी, बाकी है, अभी पार्ट वन तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
1: जी,
0: 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
0: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी, आपने डायरेक्ट भी की है?
0: जी, डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
2: मुझसे आया था
1: जी,
0: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की,
1: जी,
0: उसमें कहानी थी एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है और वो अपने बच्चों
2: वो
0: को सब कुछ दे
2: प्ले
0: देता
2: है मराठी का नट सम्राट।
0: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी जी,
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनकी कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पर फिल्म बनाने शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है, और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए, यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहां की पुलिस शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मजेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहां पे शूटिंग की गई थी, तो वहां गए थे शूट करने। अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं?
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है, तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी जी, बात अनुभव जी की चलिए, अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
1: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
0: जी जी जी जी,
1: हाँ, उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया अच्छा रोल था, छोटा जी, था, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
0: जी,
1: तो जी, उसका जी, रोल था मेरा,
0: बिल्कुल,
1: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन, तो मैंने कहा चलो। तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
0: जी, जी,
1: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और हम ओपनिंग फिल्म, और
0: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
1: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
0: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
0: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म अमोआका एक से ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम

0: लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था। और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था। तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था उस प्रतिभा जी, आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना। तो वो बात आई गई हो गई थी और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है। तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं, शुरू किया हमने। और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड। पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
1: जी।
0: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली।
1: जी जी।
0: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
2: लॉकडाउन था।
1: जी,
0: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था। पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स ऑनलाइन में भी रहा।
1: और अब वेदा कुनवा में
0: ऑफकोर्स अब तो फिजिकली करते हैं,
1: तो बहुत बढ़िया है। और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल होना ही
1: और
0: चाहिए।
1: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
0: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है।
1: अच्छा, वो प्रोड्यूसर है। तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
0: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे। तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना।
1: कोई रोल दे दो हमें भी, ऐसा बोला। तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
0: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
0: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है ना। ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि 2 ही एक्टर थे उसमें और 2 ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
1: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
0: जी।
1: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
0: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनके क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने मैं तो इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफकोर्स मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और अब तक छप्पन और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है। हाँ, और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि अरे ये एक्टिंग।
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना
2: कुछ। देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब। हाँ। मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दे। हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
1: मैं तो सब मुझे
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, मेरे नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते
1: तरीके।
2: हाँ, एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ है। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली। कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए। और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है, अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है। तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल
0: सही रहते हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: नहीं, इतने भी शरीफ नहीं।

0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए, आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
1: हाँ। तो ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा जब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रेपेट्री में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।

0: हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा देख खा जाते थे।
1: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
0: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
1: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
0: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
1: सच है प्रतिभा जी?
2: अच्छा खिलाते हैं
1: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
0: नहीं नहीं बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे। तो इकट्ठा कर करके कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल,
1: अरे वाह क्या बात है,
0: आनी थी उस दिन। और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे, हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में। भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम। तो उस घनश्याम को हमने मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
0: हम तो
1: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
0: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपया भी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
1: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
0: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते। तो वो चीजें आपके अंदर हैं, आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर के हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए, और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
1: जी बिल्कुल,
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल।
2: और हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो

0: सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ से हुजूर।
1: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
0: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी,

0: কম্প্যাক্ট ডিস্কে এতক্ষণ শুনলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আকাশ মানে কৈলা শহর, সম্প্রচারিত হচ্ছে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই ফরহত নাজ। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोका डोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद

0: वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: সম্প্রচারিত হল দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ। আকাশ বাণী কৈলা শহর অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 103.2 মেগাহার্টজে। শ্রোতা বন্ধুরা, আমাদের এবারে নিবেদন, হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান চিত্রমালা। অনুষ্ঠানে আজ শুনুন পাপা দ্য গ্রেট ছবির গান। প্রথম গানখানি দ্বৈত কণ্ঠে গিয়েছেন উদিত নারায়ণ এবং আদিত্য নারায়ণ।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जय किशन की। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा,
4: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
5: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
5: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन के हवा चले।
4: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
5: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
4: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
5: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
4: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
4: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
4: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हमसाया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है।

0: कांगड़ा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: India today stands as the fastest.
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं। श्रीमती सीतारामन चार दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम सहित 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभा का एक असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग सामग्री निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरल वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरलम में आज आधिकारिक आयोजनों सहित बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी भी आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: यानी उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है। ममता जी, वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही करे। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है तो कितना स्वाद बढ़ जाता है।
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी
0: वो खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्योहार है, क्यों ना हम केरल
0: की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
1: पुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है। और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
1: इस
0: प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
1: और उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा 12

0: रामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां है ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारे के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसाऊ में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्षा शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्षा मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्षा नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्षा कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्षा मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने

0: वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में
1: हमारे हाथ
0: जाएंगे।
1: जल जाएंगे।
0: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं टिप्पणी,
1: जी जी,
0: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर आग बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
1: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को, दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
1: लोग परिभाषा ही नहीं है।
0: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
0: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहने हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के। लेकिन एक ब्रेक के बाद

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और कोई अपना अच्छा कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है।
1: हाँ।
0: लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाए तो।
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था ये हमारे टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती ये एक सहज ईर्ष्या होती है।
1: हाँ।
0: बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान

0: ये एक सहज ईर्ष्या होती है, हाँ। बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या लिखा।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: भाई तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, ये हमारी सखी है, कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ों अगर उसे आंगन में क्या समझ भी नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई तो गजब की ईर्ष्या, अच्छा ऐसी बहाने साफ सफाई
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं, ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है, क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है, क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे, तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी,
1: और अगर
0: तो,
1: हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही
1: हो गए, घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई,
1: और कई व्यंजन भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे
1: कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है, और बहुत सारी फिल्में इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं, ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई, सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है, और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का,
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की, मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है, अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: के नाम से पहचान,
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई, उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए।

0: आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
0: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
1: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के, हाँ, पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
0: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है न कि नाम, जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी,
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़े, नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है। किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाककला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: पीछे हट
0: जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जैसी परंपरा
1: जो चल रहा है वो अच्छा है
0: जी।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी 1/2 कप, देसी घी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल 1/2 छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीसकर छान ले। चाशनी तैयार करें, एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और 1/2 कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं, गैस की आंच धीमी करें, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाएं। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठे ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे, उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाएं।
0: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक, हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
1: आप सुनवा दे,
0: सुनवाते हैं।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है कि ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं, मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, उससे मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे।
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था, वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला।
1: जी, विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही। और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है।
2: जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ।
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो, या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था, उन दिनों बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली।
1: जी।
2: छुटपन पे ही, मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था।
1: बिल्कुल।
2: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहां पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे, वो कल्चर ज्यादा था।
1: जी।
2: ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं।
1: जी।
2: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त,
2: फिर नेपाल, फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था।
1: जी।
2: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। तो पापा का वहां तबादला हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहां पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहां बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ।

0: क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जोय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, इस बारे में कुछ बताएं।
0: तो उस समय
1: बात है,
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपनी मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए किताब, और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई, और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया, हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, वो रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे। तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो बाबा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाए, बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया गया था। तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, बॉम्बे
1: ले जाना चाहता है।
0: तो ये एक और सिलसिला था
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया, दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: कोई नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है, बाकी सब

0: प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलोसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें, मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं जिंदगी

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो?
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए,

0: तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता की नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा।
1: जी
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से, लोग हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा
0: हाँ
1: कल्चर
0: मेरा शहर,
1: जी जी
0: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सबसे नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो,
1: जी
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं।
1: बिल्कुल
0: ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया, कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर
0: जी
1: चलना,
0: जी
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क,
0: जी
1: और सब कैसे संभलें
0: ये
1: वो
0: तो
1: चीज।
0: सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना,
1: जी
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे
1: बिल्कुल
0: हो,
1: बिल्कुल
0: तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
1: बिल्कुल
0: अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: मैं सबसे अलग।
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो
1: बिल्कुल।
0: यहां जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहां पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूं, आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और SD बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है, वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है।
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो यूज कर सकते हैं। तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी।
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड और ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं। ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
0: जी।
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
0: जी।
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच

0: समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो के नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचक तक के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या NMACC में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है, अगर उस चकाचौंध के अंदर कोई अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा,
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: अच्छा।
0: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा,
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारित्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है, तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी, अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं, वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली, तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ये है, और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट, सब

0: कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए, तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है। फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए, जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी। फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: ये सुबह कभी तो आएगी, पहले दुखद तरीके से गाया गया था जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
0: जी
1: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्ध सत्या, जो करप्शन फुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए।

0: अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलगाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मैंने नाटकों के बारे में, मैंने जो नाटक किया था विरासत करके नाटक है वराचरी बिंदे, ये एलकुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
1: अच्छा
0: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देखे बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर वो बात भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे विशेष व हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
1: अच्छा।
0: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
1: जी।
0: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया, उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है नॉवेला 1084 की मां के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था, ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ, उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था। उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी मां जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है, वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो मां का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी मां। इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: हैं जिया आपने उसे, उस माहौल को,
0: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया भादुड़ी जी और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी, तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
1: सुनते हैं गाना।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है,
1: जिसको
0: दिल से चाहो तो. और भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका.
1: जी, जी, जी.
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे.
1: जी, जी.
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था.
0: अच्छा.
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था.
0: अच्छा.
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था. तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, औधा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा. उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा.
0: अच्छा.
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था. मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे. तो मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था. मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो.
0: बस
1: मैं
0: एक कलाकार, एक आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था. मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं और मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा. तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था. आप सोचिए कि उस

0: 1980s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे, तो एक बहुत बढ़िया दौर था अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का टेलीविजन का, तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेली फिल्म्स बन रही थी, मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे, तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर्स थे,
1: आ रही थी, हाँ बिल्कुल,
0: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर था,
1: बिल्कुल,
0: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था, उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे या ऐलान करेंगे या परदेसी
1: रोमांटिक
0: उसमें जाएंगे
1: जी,
0: या आप कहीं नहीं, मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
1: जी।
0: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
1: इस तरह के रोल में
0: जी जी जी जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं,
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया, एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए, फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे, आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया भजा चौरसी की माँ के 1999 में तब यही चल रहा था दौर, फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है, तो भाई मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
1: जी,
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा, बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ, और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा, तो यहाँ हिंदी फिल्म में कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा, तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्योंकि मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था, मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल।

0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं
0: जी
1: उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की जगह है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
0: बिल्कुल
1: वो
0: नहीं,
1: यहाँ
0: ओटीटी
1: पर
0: में
1: अभी।
0: एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को अगर तीन सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं। वो
1: बिल्कुल
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चले जाता है।
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल। यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
0: जी मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं, बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मनजिंदन
0: गाना है,
1: से।
0: वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वैसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है, लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, पसंद किए गए हैं।
1: जी जी जी।
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी।
1: मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग, हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहां पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की, और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी,
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा।
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था। वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना, तो फिर मैंने कहा करते हैं। 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी
0: बिल्कुल। तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री, अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे हैं बहुत।
0: अच्छा,
1: ठीक है, तो वो भी अभी करने का मौका मिल गया है। वो वर्टिकल्स जो हैं वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाता है।
0: हाँ,
1: ठीक है, तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे, और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं, और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। वक्त के पुल से आरजुओं का कारमा बढ़ता रहा, दिल ने खुद से फरियाद की, पूरी हुई ख्वाहिश मिल गया एक अजीज साथी, जिसने चांद के अधूरे सफर को पूरा कर दिया, जिसने सितारों से दामन भर दिया।

0: मिला जो उसका साथ तो जमीन चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। फूलों में इत्र की सी तेज खुशबू घुल मिल गई। दिल की राहें उस ओर मुड़ गईं जहां से उसकी राहें शुरू होती हैं। पीपल के पेड़ के पीछे रुखसत होता चांद बेहद खूबसूरत लगने लगा। हसरतों का जहां आबाद हो गया
1: वो चांद।

ये हुस्न का जादू, उफ ये चांद जैसी सुनहरी आंखें, आंखें हैं या है कयामत, ये खूबसूरत गजल है या है उसकी आवाज का तिलिस्म, ये उसकी गुफ्तगू है या कोई सुरीला राग है, ये उसकी आमद है या आसमान में बिजली कड़की है और रोशनी फैल गई है, या फिर ये चौदहवीं की रात है या उसकी हुस्न का जादू।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। जिंदगी की राहों में दिल ने पग पग पर ठोकर खाई, अंधेरे घने बादलों से चमकी एक रोशनी की लकीर, ख्वाबों का जहां जगमगा गया, हवाओं में खनक सी आ गई, ओस की बूंदे मोती सरीखी चमकने लगी, जिंदगी किसी और की अमानत हो गई।

ख्यालों के आंगन में एक रोज उसने सपनों के दीप जला दिए। उसने दिखाई नई दुनिया, उस दुनिया में हवाएं गीत गा रही थीं, बारिश की बूंदें पत्तियों पर मोती सी ठहरी थीं। उस दुनिया में न था नफरत का रंग, न थी कोई तलखी, हवाओं में भी मोहब्बत की तासीर थी। दिल तब से उनके पहलू में जा बैठा है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

पुराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खुदा गवाह फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा है?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब ही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
1: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: पायु एक हेबनिखाय तामंगै मुंरक साजा गेसा काका
1: ताबुंनि असय हिमानर गय थुमनुक अंखा आबताय कुबुननि थुमनुक हाया अबखाय सिरियल पासुखा हंखायसे बेबाग मुंरक साखलाय जागनाय हाइकेन नों बा सिरियल न खनाका हनमा सिबले हायादिबा बादियासा
0: आं बताबुक बरक बांग्ला सोंगाबा रेडियो न आनि लगि सङै दंखाता नंनि आबनो आं चेंग ड्रप नि सिमिनो चफ फ्लाय खनाय दंगु सय सिमानो रोगै खायमाबा आबो बेलाय नं खाता काका तम हनमाले आं बो खरकचा साइन्स स्टुडेन्ट बा
1: हाउ नरक हाय सिनै नुंनाय तो थुमनुकनि काहाम हामिया काहाम काय सावै मानानि ककनो नरक से साजा काहाम काय तो सिंबो देबो खातो तुमा तंता बादिया सा
0: ताबु साग जे खनामा जरातिले बेबाग न जन रुगै खरप खरप काका आखिनो बांग्लास काका लेखाय नैमानि नैजिबादा नैजि दग खना
1: हायनो बेबागै नसि दगनि प्रोजेक्ट तंमाता आबो पाइख्या ताबुले पाइख्यानो हनिमानखा हायके बादिया सा नों बेबाग न मारुइ पासुगिनो खना काहायदा
0: आबोदा कक काका काइसफन करया मारियुनि खनाका आरोनि बिसिंगो आनि खाव नां सुमारंखाय पुलानि बुइनि नाहाया थुमनुग्न आं बेलाय नांजाखा हायुंगो हुकुमु करिखाय बिनि बुमिल करै आबो बेलाय खाय नांगुमानि कक हुकुमुन बेबाग दफा हदनि बुमिल बनकारिबो ताइबो तंगु आब्रगंखा साखनो याफारदि साग हामनो खुरुम पुइ बांगकुंद्रि बांग्ला ताइ साग नांगा आबो रखाय आनि चाजा कुक मानि टपिक रं नंखाता ताइ रगबो काहाम न सागानाब्ले काका नंनियो सिरियल बेलाय न काहाम खा हनै
1: बादिया सा पुलानि बुनि नाहाया थुमनुनि कक बखि तो नों तो सावै खनारिखा ताइ रखाय नों छाया खुब्लासा
0: रमदि साग न याफारदि आबो खाय तो आनि साग बाय थांनि कक हाइजमा दंसियो आनि कै खुमतिया ओ मेडिकल पढ़ियो दंफ्रु मां गथै बसखाय दरो थुमनो गब आबोन न सामानि गलाय खाता साग हाम न खुरुमपुइ आरबो नाय जाउदि निनि बसा काहाम खायसे थिनांनि लांमा हामनानि आबो सिमिया हासुगो तंनाय बाय पानथर दलियो तंनाय रंनि फेलायमुंबो आरो फुनुक जाखा बांकुंद्रि बाय बांला आबो खायबो हाबानि कग्न साजाखा नबार वातै बांकुंद्रि ताइ फेरां रक कगै दंफ्रु नों आबोनो बाहाय खाय काटिनाय आकुरक बांला फाइब्रुनि कगबो हायनो काहामकाय सुक्रुबि साजाखा साग नांजा आबोबो सिनि लांमाव बेलायनो दरता तामनि हिमाले साग नांजा माने तो केयारलेस साग नांजा माने सों दुखु मानाय आबागैन मकल खुन्जु जतन काचिमुइ दङ नांगौ
1: बुजिखा बनतै चों ताइ सालसा रिंगै सालायन दौ बादियासा अंखा नों बलें मानलेसा फैमेनि ताबु आसुक जरान अंखा दौ
0: दवागो काका साहर दिता सय सिमा कग्न रोगै थुमनुक खायमन तैयै नरक बाय गोबां मा कक सानानै दंगु आफ्रु सालायसिनो ता काका
1: सालायनाय सालायनाय आफ्रु न ताबुनि सियाल खायनो रंनि बुमुंबो नरक सायमान बायनाय ता बादियासा अंखा आं हिमका दौ
0: दवा काका साहर दि
1: साहर

painai budo ala kupa.

Espanha. Hola, Cuba.

खना सालनि सागानि तंमारि 34 डिग्री सेल्सियस दाय खामानि 26 डिग्री सेल्सियस नि गाना गिनिव तंगानो तिनि सालनि सागानि तंमारि तंमानि 36 डिग्री सेल्सियस दाय खामानि 26.4 डिग्री सेल्सियस कक्नुमा पाइनसकां कक्नुमा बुबाग्रक तावैसा सापिरो मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी तिनी नेपालनी मन्त्री बखरक बलेन्द्र शाहबाइ मालाई आरोनी किरमा सिन्चा ती लम्बाबाई डेरा जाग्रङनती कक साका ते खाकामा याफर्का मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी खना भिडियो कन्फरेन्स नि बिसिंते खेलो इन्डिया डायलग कक नारगान सालटाउनमे हास्ते फिल चितम विधानसभानि फिल्सी अधिवेशन खना फुंनि दामसिसानि सिमी चेंग जागान उमाकान्त मिनी स्टेडियम संसजाव वैकुन्थनाथ मुकुम बुरि फुटबल तिनी जम्पुजला प्ले सेन्टर कप्लाइ इंखा ককটমা তিনি বাকি অরণ্য পাখ্যা উলনি ককটমা আবাই ইঙ্গানো খনা ফং দামসিনী সতী ব্রিজুয়

Dale.